उदाहरण के इससे भीतर और समस्त स्किन पति को परोसे आए भाई को थोड़ थोड़ कर कांपे पतिव्रत श्री दरिद्रता को समीप बोले, She is so overcome by poverty.

को भी सुदामा को कपड़े के बांध लगे हैं एम हवा बागिरी है उसे त्यापी सकलौत संभोग स्थली त्यापी सही ढोटी मुट्ठी अचन इस प्राग कृष्ण चंद्र को सुदामा निवेद किया है एंड ही बिगिंस हिज जर्नी।

पुता पूजा को पास हर्ष मिले, he leaves of God immediately to meet him. और अपने अत्यंत प्यारे मित्र सुदामा ब्राह्मण मिले से आनंद होगा, कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण चंद्र नेत्र से आंसू को बूटे थकपने लगे हैं. When he sees Sudama, tears start to fall from his eyes. This is God, eh? Not man, you know. God. Could imagine that type of friendship, maitri. Imagine that type of friendship, that a divorce.

परफ्यूम पूजा करतांबूल के देखोगे प्रकार भेद मलिन की दुर्खांगूने से निकले सुदाम अक्षा देवी रुके इस ब्राह्म अंगों से उस निकल रहे ऐसे सुदामा ब्राह्मणी चमट नित्यवादि करने लगे हे राजन शिस्ते का चौरी अंडे फाने इस प्रकार निर्मल की जब सत्कार किया अवधूत सुदामा की देखे द्वारका वासियों

what type of merit does Sudama have? क्योंकि जैसे के भाई बलदेव के मिले प्रकार त्रिलोक के गुरु लक्ष्मी निवास विक्रम जो स्वयं पर ऊपर बैठे अपने प्रियतम रुक्मिणी को त्याग to leave Rukmini and just go and run towards him. ये परीक्षित इसके अपरन सुदामा और कृष्णचंद परस्पर हाथ पकड़ जब गुरुकुल में वास they begin to reminisce on the days that they spent in गुरुज आश्रम. यदि कोई को नहीं घर में रह के क्या प्रजन इस तरह श्री कृष्ण कहते जैसे मैं ईश्वर हूँ प्रकार ईश्वर माया से रचित विषय वास में आते हैं गुरु सीने चादा लॉन्ग टाइम वन हु इज सराउंडेड इन ईश्वर रहित है सुंदर सुंदर को इंडीड लड़की लेने तुम एक महाबन में गए यद्यपि वहा वर्षित नहीं पुरंतु तुम महात्रिव पवन को सात वर्ष थे. You remember the evening that we went in the forest and we get lost and the rain started falling? It's not mentioned in the Bhagavad, but it is mentioned. You know when you're feeling cold and you rain fall and you get soaked, your skin get you drying on you and your teeth just chat chat chat chat chat. Like this, Krishna and Gurumai give them a little bit of chana. And he put it in with karche. Then he karche in Sinisetudama. What going on? Are you feeling? What happened? You feeling cold? Yeah. But this time he karche in jana. And he did knock in. But Prabhu ko muskuraye. Bhagwan smiled. So when this took place, of course. Usi samay pan ko priti chandvai ko varsha. Many days we spent. Like this we got lost and when we woke up the next day Guru te dete aaye hain Shish ko baith dekha unke he mitra that kaliyug yahan tak vishrant hai guru ko ghar jab rehte hai tab se anek chitra hai. We had many wonderful days in this guru ashram. Then Shukadev ji bole hey rajan sab praniyon man ki baat jaane wale bhagwan shri krishna dwij mukh sang baat hai karne muskurat

0: needs from. He feels a little bit ashamed.
1: जो पुरुष भक्ति करके फल मुझे देता है, सुभक्ति व्यत करके कारण प्रसन्न पूर्वक भोजन करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम।

जिंद्र के भार रुक्मिणी के चामर हाथ को लेके पवन के बड़ी सेवा पवत होना के दैट लॉर्ड हु इज डिलोटिंग मेरी पूजा की यथापि प्रण पताल प्रतिसर पण दैट लॉर्ड ब्लेस एंड पॉसिबल इवन फॉर मनुष्य मोक्ष पताल पृथ्वी संपत्ति एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम दरिद्रता सुमार धन को पाकर बहुत मत वाला होकर ही गोज बैक होम एंड ही इज थिंकिंग ऑफ how he gets the opportunity to mix with the Lord. Karunanidhan Bhagwan Sri Krishna mujhe yatkin dan nahi diya hai. I didn't ask for it and I man vichar karte ugat pahuncha. Chandraman ko prakashman charu hai. When he comes home,

हाँ सा मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। डिवोटी सिंग्स टू द लॉर्ड, ओ लॉर्ड आई एम अ चाइल्ड, आई एम पुअर, आई एम हेल्पलेस, एंड यू ऑन द अदर हैंड आर ह्यूज एंड जाइजेंटिक इन फॉर्म, एंड आई हैव कम टू यू विद वन रिक्वेस्ट एट हार्ट, प्लीज प्रोटेक्ट मी। I am confident that you will do so, though I may be sinful, though my life may be filled with the blemishes of the world, but I am yet your child. I have come to your doors today, hey Prabhu, with tears in my eyes. Only your name, only your darshan, only your blessings will relieve all the pains and sufferings of my life. Only you, O Lord, will enable me to attain that state of eternal bliss.

कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और वो जैसे रोने लगता है सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और महान संदेश दे दिया।

Bhagwan realizes that the purpose in this world had been fulfilled. He now begins to put preparations in place to ascend the realm of Bhagwan Sri Krishna, of Golok, rather, Vaikunth. उसके पराचौ दूर से ही नहीं सकते हैं वह संपूर्ण यादव को वैभव अद्भुत है यादव यदूज हिज फैमिली बट बिकॉज ऑफ हिम दिस एंटायर वंश दिस लिनेज इज केप्ट इन प्लेस एंड ही नोज दैट द मोमेंट दैट ही लीव्स दैट्स द स्टेबिलिटी दैट इज गिवन बाय लीडर गुड लीडर व्हाट मिस्टर महाराज एंड मिस्टर अंबली हियर दिस मॉर्निंग And Sri Krishna does the same. He knows that if he leaves and leaves them, they will become uncontrollable. So what does he do? Vanshe agni ko utpan hote usse sampurna ban ko bhasm ho jate riti se shant ko prabhav apne paradham ko jaunga. He puts things in place to ensure that they are rid of, the earth is rid of them. So jaise vansh, you know bamboo, when it is dry and it grows close to each other and it rubs like this, out of the friction forms fire. And this is the same that is mentioned here. Brahman shap ko mishko kul ka sanghat kiya hai. He crafted it in such a way that the sarap or the curse of the Brahmins will begin the course of destruction for them. Raja Parikshit puchne ki Brahman, यादव तो ब्राह्मण को भक्त अति दीन और नित्य प्रीति वृत को सेवा करते हैं भगवान कृष्ण इज सर्वेंट ऑफ द होली वंस लास्ट नाइट वी हर्ड सुदामा हाउ ही इज दीन ही इज मर्सीफुल इतने भी भगवान कृष्ण जिनका मन लग रहे हैं उनके ब्राह्मण को लोग शाप क्या है वाई डिड ही अलाउ देम देन टू गिव कर्स टू वेलकम माई ब्रदर पाब्लो वाई डिड ही Give curse to them. Hey Bhagwan, ye shaap kya karan hai? Kya hua hai? Aur yahan sab log ke ichit man mein bhed hua hai. Hey Brahman Shresh, mai sab mujh kaho. How did this happen? What was the occasion? And how did it begin to sow seeds of discord and between all of them? Tab Shukdev ji bole, Nabasir Parikshit, pratham bhakt ko sukh dene wale पूर्ण शोभवान स्वरूप धारण कर भूमि पर अत्यंत मंगल कर्म लिए यद्यापि अब पूर्ण काम होते हैं फिर द्वारका के घर बनाकर उसके दासर ही हु इज लव्ड बाय ऑल एंड नोज द विशेस एंड द हार्ट्स ऑफ ऑल एंड द रेजिडेंट ऑफ द्वारका भक्तों को सुख दिया है ऑलवेज डज व्हाट इज बेस्ट फॉर द वर्ल्ड लोक की कल्याण है भगवान एक्ट्स नॉट फॉर हिमसेल्फ एनी इनकार्नेशन ऑफ गॉड एनी अवतार ऑफ भगवान दैट एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ is not for the purpose of their own doing. It is for the purpose for the world. That's how holy ones think. Self-conceit, abhiman, pride must never be the first place for us. We must look at the welfare of others before we look at the welfare of others. It is called Padopakat. It is called a nature that is called Padopakat. So Bhagwan, jab Sri Krishna ko tabhi Brahman chart nibit hua hai. Listen now to how this came. वसुदेव की घर भास्कर जिन कुल का नाशक ते हैं एंड दे लिसन टू व्हाट टुक प्लेस ओम नमो भगवते वासुदेव वंस एट द होम ऑफ वसुदेव देयर वाज अ ह्यूज असेंबली विश्वामित्र अस्ति कंदव दुर्वासा ब्रिग अंगिरा कश्यप ग्रेट ऋषिज दे केम सब यद कुमार के आ नमस्कार चरण पकड़े पूछे हैं ऑल द यंग पीपल देयर दे केम एंड बाउ टू द फीट ऑफ द होली वंस मन में कपट को भरा हुआ है यहाँ सब बालक जाम्बुवती के पुत्र सुंदर श्री बनाकर मुनिये हैं समटाइम्स यंग वंस डू समथिंग एंड वी स्कोल देम एंड वी गाइड देम बट आवर जॉब इज टू गाइड देम व्हेन यू यंग यू डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली बट एज यू ग्रो अलोंग इन लाइफ प्रायोरिटीज चेंज व्हेन यू आर यूथ यू डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग बट व्हेन यू बिकम मैरिड यू हैव चिल्ड्रन यू हैव अ फैमिली यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली You can't think for yourself. You have to think for your family. You have to think in terms of your family. So youthful, Sundar Sri, they took one of the boys, Yadu Kumar Kumar Neyakar, and they
dressed him up like a girl, and they put a pillow in front where his belly is, and they pulled his sari over. And when they did this sundar sri banakar, Muni ke sanmukh lekar haath jod ko poochne lage, and they put their hands together and they went in front of the assembly of sages. Say sarvagya, O great sages, वहस्त्री गर्भवती इसके पुत्र इच्छा हैं और प्रसव होने वाले हैं. दिस गर्ल इज एक्सपेक्टिंग एंड शी वॉन्ट्स टू नो वट टाइप ऑफ वट जेंडर ऑफ चाइल्ड शी विल हैव. इनोसेंट, वेरी इनोसेंट. तुम्हारा सम्मुख आने की लज्जा होते हैं, एंड शी इज वेरी अशेम्ड, सो ही प्रिटेंडेड लज्जा होते कारण कृपा को कर बताए. बट प्लीज टेल अस योर ऑल नोइंग, यह को लड़का और यह को लड़की, विद अ सन और डॉटर बी बोर्न. हे राजन, इस प्रकार जब चल से पूछ यादव को बोला कर अत्यंत क्रोधित होकर सुनी बोले कि हे मूर्ख, बट दी होली वंस न्यू, दे वेरी नॉलेजेबल. समटाइम्स समवन कम्स टू अस आस्क अस अ क्वेश्चन नोइंग फुली वेल व्हाट द आंसर इज, बट दे वांट टू आस्क अस टू सी इफ वी नो. दिस टाइप ऑफ इंटेंट विल नॉट डू वेल फॉर यू. So when they did this, unto hokar mur, tumhara kulnashak ko musal ka ulak utpan hua hai. You know what she will make? She will make a musal, a pestle that will be the destruction of your family. And so say, that is what took place. A musal appeared, Ukrainian musal, it appeared. Is prakar jab ke chal se yadav balak ko atyant krodhit hue hain. Out of the anger of the sages, Muni bole hey murko. And when they said this, Musal dekha bhayabhit ho gaya. When they saw this, they became afraid. Paraspar kahne gaye, humko manush kyu kahega? Behal Musal ko aaye hain, jiske mukh shobha malin ho gayi hain. Is sab balak ko Musal sab aaye. Mouth that, you know, impure words came out. Yadav Raja Ugrasen kahne lage. The elder in the family, Raja Ugrasen, Kan's father, who was re-established by Sri Krishna. परंतु श्री कृष्णा ने कहा, हे महाराज परीक्षित, मुनियों का अमोक शाप श्रवण कर मूल देव को सब द्वारका वासी बड़ा शयमान को भयभीत हो गया. द ऑल ऑफ द्वारका व्हेन दे हर्ड दिस, दे न्यू इट वाज नॉट अ गुड साइन. और इसके उपरांत श्री कृष्ण चंद्र के पूछे उस मूसल राजा उग्रसेन चूर्णा, किंग उग्रसेन टुक इट एंड चूर्णा. ऑल इन वेज चिली बीबी, how many people know chili bibi? The nation know chili bibi? From small days, sell it in a, they roll the paper like a cone and they put it inside. And when I am finished, the younger ones who are not here, find out from your parents what is chili bibi. It's a powder. Chudna ho gaye. He had it grounded. And take a boat. Jal mein baha diya aur रित से बचा को उसको समुद्र को जल को डाल दिया. ही ग्राउंडेड द पेसल एंड ही सेंट इट स्ट्रेट, ही टुक अ बोट एंड सेंट इट इनटू द मिडल ऑफ द ओशन एंड थ्रू द पाउडर देयर ऑफ इट. वाटंत लोक में, बट व्हेन फेट हैज टू टेक इट्स टर्न, सबके पेतले उत्पन्न हुआ महास्तक मत्स्य, मत्स्य सुगंध धीरे जल को पकड़ा है. ही थ्रू इट अमंग्स फिशेस. One fish ate some remnants of it. उसकी मत्स भी मत्स को देर गए, फेट को लोहा है, निकाल को उसने अपने थीर को बनाए, भाल को बनाए हैं. यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण बात को जानते हैं. A fisherman caught the fish, opened it, got the remnants of it from there, made it into the point of an arrow and attached it to an arrow. That's why when fate has, when something has to pass, you can't stop that. You can take evasive maneuvers, but you can't stop it. And when this happened, yadukul ko nivadhan ke viprashap muke hu uske kal rup hai. Now Bhagwan waits on time to send back everyone.

भगवान बदरायन परीक्षित की पूजा स्वीकार कर मांग मुनियों को एंड परीक्षित हैज द कंक्लूजन ही डज पूजा तो भगवान शुकदेव व्यासात्म चंद्रमा एंड राजऋषि परीक्षित बुद्धि से मन को डो पर ब्रह्मन को लगाए हैं ऑलरेडी एस्टैब्लिशिंग वननेस विद गॉड बॉडी इज एग्जिस्टिंग बट सोल इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न हो इंद्रियों को निश्चल कर सुख प्रश्न नाय अचल हो हिज सोल रैप्चर्ड इन द डिलाइट ऑफ श्री कृष्ण सच्चितन आनंद ही रीच्ड द स्टेज ऑफ आनंद गंगा किनारे पूर्व उग्र कुशासन पर बैठे हैं ही सैट ऑन द गंगा अपॉन कुश संचय निसंग महायोगी परम दम तड़का हो गए हैं एंड इन द पोजिशन ऑफ ही इज नाउ महायोगी उतारने चतुर तब तक्षण जिस समय तक्षक को ब्राह्मण को वेश धारण करके राजा परीक्षित खाट में के मिला मार्गोर्स के तक्षक टुक द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण एंड ही वाज गोइंग टू मीट राजा परीक्षित मिले तक्षक कश्यप जी के पूछा आज आप कहां चले गए तक्षक कश्यप महामुनि मेट तक्षक से वही ऑन वे टू से आई टू मीट राजा परीक्षित इसे फॉर व्हाट इसे आई टू आई नो हाउ टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ राजा परीक्षित को आ गया सर्प को काट के हम उसका अच्छे करते हैं तक्षक को कहा कि तक्षक काट के अडो के करने हैं किसी के समर्थ नहीं आप तो क्या वस्तु है आई हर्ड दैट तक्षक इज गोइंग टू बाइट हिम बट आई हैव अ रेमेडी एनीथिंग दैट तक्षक कैन डिस्ट्रॉय आई विल ब्रिंग बैक टू लाइफ आई विल ब्रिंग बैक टू लाइफ कश्यप बोले कि यदि तो होते है उसका अपना कर्तव्य बता तक्षक बोले तक्षक बोला भस्म हो गया हूं कश्यप को संजीवनी मंत्र पढ़ाकर लकड़हारा के तन बर्न्ड अ ट्री मृत्यु एंड कश्यप संजीवनी ब्रिंग इट बैक टू लाइफ सो व्हेन ही रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग ही रियलाइज व्हाट वाज टेकिंग प्लेस Takshak gave him what he wanted. He gave him all the gems and that he wanted and he went on his way. He forgot his what his mission was. Javish dur ke kashyap ke dhan se jaane se dole hain ichha tab takshak ko brahman dare ke apne aap ko chipa kar raja pariksho ja kar dega brahma sup raj rishi parikshit deha विश्व सबके देखते उसी समय जल कर को छार गया है एंड तक्षक केम एंड ही इन्फ्लिक्टेड ऑफ कोर्स ऑफ दैट देख देख उसी समय जल कर देवता को आकाश में धुंध भी दिशाओं दो बड़ा बड़ा हा कर द मोमेंट दैट ही वाज बिटन अ लाउड साउंड वाज हर्ड नगर में कोलाहल मच गया है देवता असुर मनुष्य आदि को सब आश्चर्य आकाश में देवता बाजने लगे गंधर्व को गान लगे अप्सरा को नृत्य करने लगे और पुष्पों को वर्ष और पुष्पों को वर्ष गया महापुरुष बारंबार धन्यवाद देते हैं राजा जन्मेजय अपने पिता को परीक्षित तक्षक को दास सुनाकर

0: कृष्ण जिन्हका नाम है, गोकुल जिन्हका धाम।
1: Soft guys, gotta keep it soft. Instruments gotta be soft.

All right. अच्छा एक बार बोलो सुरवृंदावन बिहारे लाल की जय। Ready Amrup? Well, I have a one directional flow or two directional flow? Okay, we're finishing up on this side or everybody going around? What? Here? Yeah. Right, don't do two sides, you'll come too clustered. All right, let's go. East first. ओम ब्रह्मत्रप्यन्तोम विष्णुस्त्रप्यन्तोम रुद्रस्त्रप्यन्तोम मनवस्त्रप्यन्तोम ऋषेस्त्रप्यन्तोम रुद्रपुत्रेस्त्रप्यन्तोम साध्यस्त्रप्यन्तोम मधुर्गणस्त्रप्यन्तोम ग्रहस्त्रप्यन्तोम नक्षत्राणिस्त्रप्यन्तोम योगस्त्रप्यन्तोम ओम नाशेस्त्रप्यन्तोम वसुधात्रप्यन्तोम अश्नात्रप्यन्तोम ओम यक्षस्त्रप्यन्तोम रक्षांसेत्रप्यन्तोम मातरस्त्रप्यन्तोम रुद्रस्त्रप्यन्तोम पिशाचस्त्रप्यन्तोम सुपर्णास्त्रप्यन्तोम ओम पशवस्त्रप्यन्तोम दानवस्त्रप्यन्तोम योगस्त्रप्यन्तोम विद्याधरस्त्रप्यन्तोम मोकदयस्त्रप्यन्तोम ओम दिगजास्त्रप्यन्तोम देवगणास्त्रप्यन्तोम देवपत्न्यास्त्रप्यन्तोम ओम लोकपालस्त्रत्यन्तोम नारदस्त्रप्यन्तोम चन्दवास्त्रप्यन्तोम रतवास्त्रप्यन्तोम जङ्गमास्त्रप्यन्तोम ओम अत्रिस्त्रप्यताम ओम अङ्गिरास्त्रप्यताम ओम पुलस्यस्त्रप्यताम ओम पुलस्यस्त्रप्यताम ओम क्रतुस्त्रप्यताम ओम वशिष्ठस्त्रप्यताम ओम प्रचेतास्त्रप्यताम ओम भृगुस्त्रप्यताम ओम नारदस्त्रप्यताम नॉट नॉट ओम सनकस्त्रप्यताम स्त्रप्यताम ओम सनंदन

0: All right.
1: ओम विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु नमः परमात्मने ब्रह्मनो द्वितीय पदादेश श्वेतवार कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अश्विंशति तमे कलयुगे कल्पतम चरण भूलोके जम्बूद्वीपे त्रणदादेशस्य आषाढ़ मासे शुक्लपक्षे त्रयोदशी तिथौ सूर्य कर्क राशि स्थिरे शुशांकशे धनुषाशि स्थिरे मूल नक्षत्र वर्ष ऋतौ दक्षिणान परावन संवत्सरे रविवारे इंद्रयोग कौलव करण अमुक गोत्र योर फैमिलीज नेम जस्ट टेक माइट नॉट नो ग्रोथ शास्त्र फल प्राप्ति अर्थ से भगवत प्रीति शेषर सुड वंगना डॉपकूडम ताम प्रश्रम कास काश्युपदायनम वस्त्र गचयनम यथाशक्ति अलंकृतम सुपूर्जतम सोपुस्कारम स ओम स गावम रुद्र देवतम इमाम माम गोत्राय शांडिल्या गोत्र ब्राह्मण अमृतनामस्य ब्राह्मण अहम संप्रददे से ओम श्री कृष्ण अर्पणम ऑलराइट लेट्स गो

अद्य गोत्र गोत्रस्य प्रतिभूं गावः गावः निष्कव्य कुमरत्नामस्य ब्राह्मण तुभ्यम् अह संप्रददे अहम् शान् गोत्रस्य कृतस्य गावद्वार कर्मणा प्रतिष्ठ संगसिद्ध्यर्थं दक्षिणद्रव्य गोत्र कुमरत्नामस्य ब्राह्मण अहम् संप्रददे. टेक All right, take a little flowers in hand. Gau mama upishtam dohe trapya panchamude surabhye saudabhishya sarate sagara. Gau me pashyam nityam gavam pashyantu mama sarvada. Gau asmam vayam tamasam yato vasu vayam. Gau surabhye nityam gau muktirne. Gau pratishta bhutanam gau sarasvatyay. Namaha namo gopyo srimate saudabhishayiva. Namo brahmastutaye pavitra bhyo namo namo. Brahmani bhesh gavash gavasrai gudakritam. एक प्रतिष्ठन्तु ओम हविर्कत्रे तिष्ठतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवरीबॉडी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते. इन टू द एयर नाउ एंड आई विल टेल यू व्हाट टू.

य सोमाय वैश्वनाडाय च नमः शन्नो देवेद विष्टापो भवन्तु पीतये शन्नो डबे सवन राइट वे यू स्टैंड यू विल गेट स्मोक जस्ट पास द स्मोक ओवर योर हेड

भक्तवीनां समर्पयामि साक्षं भोवो इन्द्र स्वः स्वः दिशां रक्षतु बलिं भक्षत कृपां विस्तरं मम सुकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयु कर्ता क्षेमकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता वरो भवेत् शिरो करौ कृत्वा भूमौ जनभ्यं पित्वा सूर्यादि नवग्रहदेव इन्द्रादि दृष्टिकालदेव ओम अग्नि प्रत्यादेव चतुष्षष्टि क्षेत्रपाल देवता सहित सबका देवता ओम बलिम सपाप सपरिवारम सकुटुम्बकम आयु पुष्टिर भवो भव यस्य स्मृत्य च नामोक्त्या तप्यो यज्ञो क्रियादिषु

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: जय सीताराम, यू आर अबाउट टू लिसन टू आवर स्पॉन्सर्ड फीचर एसेंस ऑफ द गुरु विद पंडित नावीन उमानाथ महाराज। इट्स कमिंग टू यू विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द लिटिल स्टोर लिमिटेड।
2: From birth, we instinctively pursue knowledge to grow, be it the arts, academia, or a spiritual journey. One

0: Remember, your WhatsApp greetings comes in at the number 312-3901. Landline calls 1663-1027.
1: कनक बदन कुंडल मकल मुक्ता माला अंग पद्मासन स्थित ध्याइए

सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां आत्मतत्वप्रबोधाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते लक्ष्मी करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां मम शत्रुविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओं, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।